ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी जिसका प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी की मैं कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।

0: राष्ट्रपति।
1: कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी,
0: कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट मन परमेवदासी,
1: कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होता,
0: कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कर्म का विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्यावे, नानक करते कांत न पावे,
0: कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी,
1: कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपेग आत्म निकोर,
0: कई कोट पर धर्म को हिर है, कई कोट पर दुना कर है,
1: कई कोट माया सम्मा है, कई कोट पर देश पर मा है,
0: जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी,
0: कई कोट पंखी सर्व उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
1: कई कोट पवन पानी बेसंतर, कई कोट देश मंडल,
0: कई कोट सस्य सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र,
1: सकल समग्री अपने सूत तारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार,
0: कई कोट राज स्वामन सातक, कई कोट वेद पुराण स्मृति अर शास्त्र,
1: कई कोट किए रतन समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जंत,
0: कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी में स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जग किंकर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच,
0: सबके नेरा सब होके दूर, नानक आप लिप्त रहया परमूर,
1: कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी,
0: कई कोट जन्म जीवे मर है, कई कोट बो जोनी फिर है,
1: कई कोट बैठ थी खाए, कई कोट काले थक पाए,
0: कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत,
1: जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किश प्रभु के हाथ,
0: कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी,
1: प्रभु को खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते,
0: कई कोट दर्शन का प्यास, तिनको मिलियो प्रभु विनाश,
1: कई कोट मागे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग,
0: जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक तीजन सदा तन तन,
1: कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
0: कई कोट हुए अवतार, कई युग कीनो विस्तार,
1: कई बार पसरे उपासार, सदा सदा के एकंकार,
0: कई कोट कीने बपात, प्राप्त हुए प्रभु मोहि समात,
1: ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभु सोए,
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो क्या तुम प्रगास,
1: कई कोट तत् के बेते, सदा न्यारे एको नेत्र,
0: कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सब सही जीवे,
1: कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सह समावे।

0: गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार से तन अंतकनि संसार
0: तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पहचान एतुत कियो सो जी जान
0: संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै
0: साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत
1: अनगिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ भय सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक सिंह लागे दुख
0: को हर प्रमाण चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसने डरे
0: ऐसा सा तैसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद सत सब बुझिया
0: देखो तब सब किछ मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल
1: न किस जन्म न किस मर अपन चल त्याग ही करे
0: जाऊं दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: आपे आप सगन में आप अनक युक्त रज थाप थाप
0: रासी नाही किछ खंड तारण तारियो ब्रह्मंड
1: लख भेव पुरख प्रताप आज पाए ता नानक जाप
0: प्रभ जत्ता सो सो भवंत सगल संसार उदरे तिन मंत
1: प्रभ के सेवक सगल उदारन प्रभ के सेवक दूत विसारन
0: प्रभ के आपे मेले कृपाल गुर का सब जप निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़भागे
0: नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुर को उत्तम करमान
1: जो किछ करे सो प्रभु का रंग सदा सदा बसा हर संग
0: सहस भाई होवे सो होए करने हर पछाने सोए
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना
0: उपजे तिस माए समाए ओ सुख निदान।

0: जे बिते काटे जन्म जन्म का टूटा गांडे
1: गुरपुरै ताते है बुझाया प्रभु अपना नानक जन के आया
0: साजन संत करो एक काम आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अपना नाम जपावो
0: भगत पाए तरिए संसार बिन भक्ति तन होसी शार
1: सगल कल्याण सुख नित नाम बूढ़ जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुंतास
1: उपजी प्रीत प्रेम रस चाहो मन तन अंतर ही सुहाओ
0: नेत्र उपेख दर्श सुख होए मन बिसे साध

0: दयाल भक्त वशल सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल
0: आदि पुरुष कारण करतार भक्त जना के प्राण आधार
1: जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन हीत
0: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्व पै

0: राष्ट्रपति।
1: जब आकार एक कुछ ना दिसते ता पाप पन तब कहते होता।
0: जब तारी आपन सुन समाद ता बैर ब्रोक के संक मात।
1: जब इसका वर्ण चहन ना जापत तब हर्ख सो क्यों किसे प्यापत।
0: जब आपन आप आपार ब्रह्म ता मो कहा किस होवत परम।
1: आपन खेल आप बढ़ती जा नानक करने हर न दूजा।
0: जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किस को गनी।
1: जब एक हर अगम अपार तब नर्क स्वर्ग को कौन अवतार।
0: जब निर्गुण प्रभ सह सुभाई तब शिव शक्त कहो दिखाई।
1: जब आपे आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे।
0: आपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अगम पार।
1: अविनाशी सुख आपन आसन ते जन्म मरण को कहा विनाशन।
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए।
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चितर गुप्त किस पूछत लेखा।
0: जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे।
1: आपन आप आप ही अचाजा नानक आपन रूप आप ही अपरजा।
0: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तै बिन मैल कहो क्या तोता।
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन को मान कौन अभिमान।
0: जय स्वरूप केवल जगदीश तै छल छिद्र लगत कौ कीस।
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तै किसे पूक कवन तृप्तावे।
0: कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार।
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई।
0: जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कतेब कहा तो चीन।
1: जय आपन आप उतारे तो सगन अब सगन कहा बिचारे।
0: जय आपन ऊंच अपने आप नीरा तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा।
1: विस्मन विषम रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप।
2: जय छल अशेद पवित्र।

0: आपन आप पाप पतियारा ते कौन कथे कौन सुनने हरा।
1: बहु बेअंत ऊंचे ऊंचा नानक आप सो आपी पहुंचा।
0: आप रचियो परपंच आकार ते गुण में कीनो विस्तार।
1: पाप पुण्यता पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत।
0: माल जाल माया जंजाल होमे मो परम पै पार।
1: दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार यो बखियान।
0: आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक एके।
1: जय भगत भगत आप जय सदा पा।

0: राष्ट्रपति
1: आप कथे अब सुनने हार आपे एक आप विस्तार
0: जात सुखावता सिष्ट पाई अपने पानी ले समाई।

0: संत बिटिया नानक मन परगास अष्टपदी
1: साध संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सगल सामग्री एक कट माहे अनेक रंग नाना दृष्टाहे
1: नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाद अनहत्या नाद कह न जाए चर्ज विस्माद
1: इन देख्या जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सोजी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहया भगवंत
1: मैं काश प्याल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
0: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: कौन पानी वे संतर माह है चार कुंट दह दिशे समा है
0: तिसते पिन नहीं को ठाओ गर प्रसाद लान सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमरत में देख सस्यर सूर नक्षत्र में एक
0: वाणी प्रभ की सबको बोले आप ढोल न कबू ढोले
1: कलाकर खेले खेल मोल न पाइये गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत में जाति ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में एह विश्वास
0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने सब वचन सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिस किए रहत सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सो होई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभ जाने
0: अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
0: तिस भाव ता करे विस्तार तिस भाव ताई कंकार
1: अनक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कवन मिट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर
1: अंतरगत जस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए
0: सर्वभूत आप वरतारा सर्व नैन आप विघ्नहारा
1: सगल सामग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना
0: आवन जानिक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
1: सबके मद अल्पतो रहे जो किच कहना सो आपे कहे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए
1: इसते होए सो नाही बुरा उरे कहो किन्ने किच करा
0: आप भला कर तू

0: अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सास सास सुनो गोविंद मन अंतर की उतरा चिंद
1: आसनेत त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग
0: आप छोड़ बेंती करो सार संग अगन सागर तरो
1: अर्तन के पर लेओ पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार
2: खेम कुशल सहज आनंद सार संग पज परमानंद
1: नरक निवार दारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चित भाव नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
1: पाल तमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बार नानक जी का है आधार
1: उत्तम श्लोक साथ के बचन अमलीक लाल रतन
0: संत कमावत होत उदार आप तरह लोक का निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द नाहत बाजै सुन सुन आनंद करी प्रभु गाजै
1: प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तिनके साथ है
0: संजोग सुन सरनी आई कर कृपा प्रभु आप मिलाई
1: इनके पैर पै सब रहन अमृत नाम साध संग लैन
0: सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव
1: जाल जंजाल बिकार तेरे ते राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद या प्रतारी नानक निधि के हमारी
1: रब की उस्तर करो संत मीत सावधान एकागर चीत
0: सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसा सो होत निदान
1: सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान बौर न होवे आवन जान
1: बर्तन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नाम निद बुद्ध ज्ञान सर्व का सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश सब के मन सकल उदास
1: सुंदर चतुर तत्व का वेता समदर्शी एक

0: एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा, सरियस के जगर के ईसा,
1: पोपन ब्रेष्ठ गगन दे पे सब है ज्ञान बुदाई देई,
0: तन तन लोगन के राजा दुष्ण दाह गरीब ने वाजा,
1: अकाल पवन के सृजन हारे दास जान मोह लेहो बारे।
0: कबे बाच बेची चौपाई हमरी करो हाथ रह रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा,
1: तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत बारा।
0: हमने दुष बै तुम कावो आप हाथ है मोए बचावो,
1: सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा।
0: मोर रज्जा निज कर दै करिये सब बैरन को आरसन गरिये,
1: पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा।
0: महा शाट को अवर न त्याऊ जो बर जाओ से तुम ते पाऊ,
1: सेवक सिख हमारे दारी है जंजन सदर हमारे मारी है।
0: आप हाथ दे मुझे बरिये मरण काल का त्रास ने वरी है,
1: जो सदा हमारे पिछा सरियस तो जो करे हो रक्षा।
0: राख लोहे मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे,
1: दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो बरी चतुर्दश कंता।
0: काल पाए ब्रह्मा बप्तरा काल पाए शिव जु अवतरा,
1: काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।
0: जमन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो,
1: जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा।
0: जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जज छनि उपजायो,
1: आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा।
0: नमस्कार तिथि को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी,
1: सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को बल मोहबत कियो।
0: कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत,
1: चीटी ते कुंजरे असूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।
0: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी,
1: एक एक ही पीर पछाने कट कट के बट बट की जाने।
0: जब उत्कर्ख करा कर तारा प्रजा तर तब दे अपारा,
1: जब या करख कर दो कबू तुम मैं मिलत दे तर सबू।
0: जीते बदन श्रेष्ठ बतार आप अपनी बूझे उचार,
2: तुम सब
1: ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरियालम।
0: निरंकार निरप का निर्लंब आदर नील अनादि असंभ,
1: ताका मूल उचारत भेदा जाको पेवन पावत भेदा।
0: ताको कर पाने अनमानत महामूर्खत पीर न जानत,
1: महादेव को कह सदाशिव निरंकार का चीनत न पिव।
0: आप अपनी बुद है जेती बनत पिन पिन तो ही तेती,
1: तुमरा लखन जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा।
0: कह रूप अनूप स्वरूप रंक प्यो राव के ही पूपा,
1: अंडज जेर से तजगीनी अदबज खान बहो रच दीनी।
0: कौं फूल राजा हुए बैठा कौं सिमर प्यो संकर कैठा,
1: सिगरी सृष्टि टिकाया जम पव आज गात स्वरूप स्वयं पव।
0: रक्षा मेरी तुम करो सिखयो बार्य सिख संगरो,
1: दुष्ट चिरे अठोर गदबाता सकल मलेश करो रण काता।
0: जियस्तु जब सरनी परे तिनके दुष दुख तो है मरे,
1: पुरख जवन भग परे तिहारे तिनके दम संकट सब तारे।
0: जो कल को एक बार त्या है ताके काल निक नहीं आया है,
1: रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट तरह तत्काला।
0: कृपा जिस चन जाए ने हर हो ताके ताप तनिक मैं हर हो,
1: रिद सिद्ध कर मोह सब होई दुष्टाश्वास कहन कोई।
0: एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फाते ताहे उबारा,
1: जिन्नर नाम त्योहारो कहा दार्त दोष दुख ते रहा।
0: करके मैं शरण त्योहारी आप हाथ दे ले हो बारी,
1: सर्व ठोर मोह सहाय दोष दुख ते ले हो बचाई।
0: कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता,
1: खिलबिक सकल देह को हरता दोष दोखे अंकोश करता।
0: सियस्तु जब पे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला,
1: मन पंच फल पावे सोई दुख न तिस व्याप्त कोई।
0: सुनै गुंग जो याहे सरसना पावे,
1: सुनै मूड चित लाए चतुरता आवे।
0: दुख दर्द पौ निकर ना तिन न के रह,
1: हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई।
0: संबल सत्रह सैस पर निजय अर्ध सैस पुन तीन कहे जय,
1: पादर सदी समीर वारा तीर सदरव ग्रंथ सदारा।
2: इत श्री चरित्रो पख्याने
1: त्रया चरित्र मंत्री भूप संवादे,
2: चारे सौ पांच चरित्र समापत
1: मस्त शुभ मस्त अफजू।
2: दोहरा दास जान कर दास पारे की जय कृपा अपारे।
1: आप हाथ राग मोहे मन क्रम वचन बेचार,
2: चौपाई मैं न ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ
1: ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕੋ ਭੂ ਮੈਂ ਧਿਆਉ
2: ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਤਿਨ ਸੋ
1: ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗੇਨ ਸੋ
2: ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ
1: ਮਾਂ ਲੋਭ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰੋ
2: ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਰਖਵਾਰ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਜ ਵਿਚਾਰ
2: ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਮਜੈ ਪ੍ਰਤ ਭਰੀਐ
1: ਜਿਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਰੀਐ
2: ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਉ ਚਲੈ
1: ਰਾਖਿਆ ਮੈਂ ਔਰ ਨ ਦਲੈ
2: ਮਮ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ
1: ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਸ ਤਿਹਾਰਾ
2: ਜਾਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਝੈ ਨਿਵਾਜ
1: ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ
2: ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ
2: ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੋਹੇ
1: ਹਰ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆਨ ਦੁਆ ਤੋਹੇ
2: ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ
1: ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰਾ
2: ਦਾਸ ਜਾਨ ਦੈ ਹੱਥ ਉਬਾਰੋ
1: ਹਮਰੇ ਸਭ ਬੈਰੀਅਨ ਸੰਗਾਰੋ
2: ਪ੍ਰਥਮ ਧਰੋ ਭਗਵਤ ਕੋ ਧਿਆਨਾ
1: ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਕਬਦਾ ਬਿਦਨਾਨਾ
2: ਕਿਸਨ ਜਥਾ ਮਤ ਚਿਤ੍ਰ ਉਚਾਰੋ
1: ਜੋ ਹੋਏ ਕਬਲੇ ਉਸ ਧਾਰੋ
2: ਕਬ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਨਿਜ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸੋ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹੇ ਹੋ ਜਗ ਮਾਹੀ
1: ਜੋਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਹੈ ਸੁਰੂ ਕੋ ਜਾਏ
2: ਦੋਹਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ
1: ਜਲਤੇ ਉਪਜਿਤ ਰੰਗ ਜੋ ਜਲੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ
2: ਦੋਹਰਾ ਜਪ ਆਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪਇਓ ਜਨਮ ਤਰਾ ਜਗ ਆਏ
1: ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੰਚੇਪ ਤੇ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਦਸਣਾਏ
2: ਕਬ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ ਠਾਡ ਪਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ
1: ਪੰਚ ਤਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ
2: ਦੋਹਰਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਮਰੀ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਉਠਤੇ ਹੈ ਸੰਤ
1: ਅੰਤ ਲਹੇਂਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵੇਂਗੇ ਭਗਵੰਤ
2: ਦੋਹਰਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋ ਕੋਟਿਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼
1: ਕੋ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ ਰਾਸਸ ਕਰੋਰ ਜਲੇਸ਼
2: ਦੋਹਰਾ ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਖਤ ਨੇਤ
1: ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਰਗ ਬਰ ਕਰਾ ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ
2: ਚੌਪਈ ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੈ ਅਰਗਾਵੈ
1: ਦੂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ
2: ਸੰਪਤ ਕੀ ਇਹ ਫਲ ਹੋਈ
1: ਆਜ ਬਿਆਜ ਹੋ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ
2: ਸੰਮਤ ਸਤਰਹ ਸਹਿਸ ਪਚਾਵਨ
1: ਹਾੜ ਵਦੀਪ ਥਮ ਸਕਦਾਵਨ
2: ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ
1: ਫੂਲ ਪਰੀ ਲੋਹ ਲਿਓ ਸੁਧਾਰਾ
2: ਦੋਹਰਾ ਨੇਤਰ ਤੰਗ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰ ਸਤਦਰਵ ਤੀਰ ਤਰੰਗ
1: ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਰਗਬਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
2: ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਸੁਬਾਦ ਵਿਬਾਦ
1: ਗ੍ਰੰਥ ਸਕਲ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਭਗਵਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ
2: ਸਵਈਆ ਪਾਏਂਗੇ ਜਬ

पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह मंडाही। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड़ बड़ा है। जन नानक नाम आधार टीक है, हर नामे ही सुख मंडा ही। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सहेला। आओद घटै दिन सरैणा री, मन गुर मिल का सवारे रहाओ। यो संसार विकार संसे में है, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिस है जगाए पियावै हो रस, अकथ कथा तिन जानी। जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मन है बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजी, बहु

आसु इह सुख मांगे मुको कर संतन की अंतर जामी पुरख विदाती सरदा मन की पूरे नानक दास इह सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

रात मेरा तुम्हारे साहेब सुन साहेब प्यारे दीन ब्रह्म दुष्टन के हिंसा तुम हो पूरी चक्र दस्कंता। काल पै ब्रह्मा भक्तरा काल पै शिवजु अवतरा काल पै कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जौन काल जोगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा दूसी यो जौन काल सब लोक सवारा नमस्कार है साहे हमारा। जौन काल सब जग को बनायो देव दै जशन को जायो आदंते के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जगे आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरुण को पल मो भज सियो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दुष्ट कर छोड़ो कम कम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधु ते सुखी के की पीर पछाने कट कट के पट पट की जान। जाबुद करकरा करतारा प्रजा तरतव दे अपारा जवा तक करत हूँ कभू तुम मैं मित दे कर सब हूँ। देते बदन के सब तारे आप अपने जीव तारे तुम सब के है स्मराल जान वीर भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब याद निरना देव संविता का मूढ़ चार भेदा जा को ते न पाप विद्या ता को कर पहन कमान महा मूढ़ कछ भेद न जान। महादेव को कह सदा शिव निरंकार का कीमत नह सेवा पाप निबध है जेती बरनत भेन भेन तहि चेती। तुमरा लखा न जाय सारा कहि बिस जाप तुम संसार आए कह रूपन रूपार प्योरा कहि पुष्पांड जी ऋषि ऋषि बिलखान बहर रख दीनी। कहूँ फूल राजा वह बैठा कहूँ छंड व्यव शंकर कैठा शिविर से सिखाए चंकल वाज उदास रूप सुजन पवा परीक्षा मेरी तुम करो। सिख उबार सिख संगर दृष्टि तय उठो तो पाता सकल मले चकर वरण काता। जे आस तुझ तब सर नहीं परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारी जो पर कुबार क्या है ताके काल निकट न है ऐ। रक्षा होता है सब काला दुष्ट हरिष्ट टरे काला कृपा दुष्टन जय न हर ताके ताप तनक में हर थोड़े दिशे विकार हो सब हुई दुष्ट छाछ व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास देता है बारा जिन नाम त्योहारो कहा दार दुष्ट लोग तेरा खड़ के तुम्हें सन त्योहारी आपा दे ले ओ बारी। सर्व ठाउर मोह हो सहज दृष्टियों ते लह बताए कृपा करीम प्रति माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता तू भी सकल देह को हत्ता दुष्टों खिन को क्षय करता। श्री अस्तु जब पै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांच फल पावे सोई दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़ल। सुनै गुंग जो जाह सुर सुना पावे सुनै मूर्ख तुला चतुरता आवे दूर दर भाव निकटना तुम नरके रहे हों जो जा पिए एक बार चौ पई को कह चौ पई। संबत सत्रह सहस पुणी दय अर्ध सहस तुम तीन कही दय भाद्रव सुधिया निरवारा तीर तत्रो ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गए जब ते तुमरे तब देखो आ तेरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमर सास सभी सब बहु भेद का मेक ना जान्यो श्री स्पान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा सरल द्वार को छाड़ के रहो तुहारो द्वार बाहे गहे के लाज अस गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल। सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

अवतार लोके न अवतार, सफल जीव सफलता का संग, जाक मन लग हर रंग। जय जय सुदाना द्वार, जय सुन सुन अंध करी प्रभु का, जय प्रगटि गोपाल महंत का माथी, नारायण कुदरी तिनका साथी। शरण जोग सुन शरण आई, कर कृपा प्रभा मिलाय, मेट गए बैर भय सब दीन। अमृत नाम साध संग लय सो प्रसन्न पाए, गुरुदेव पूर्ण हो शिव की सेवा। आल जंजाल विकार ति रहति, राम नाम सुन रसना कहति कर प्रसाद। दया प्रभु तारि नानक, निवहि खेव हमारि, प्रभु की उस्तत करहु संत मीत। सावधान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज गोविंद गुण राम, जिस मन बसा सोधन धान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रदान, पुरख प्रगट सवल होए सब तीज पाय स्थान। बहना होया वन जान, हर तन घाट जला जान, सोय नानक जिस प्राप्त हुए। हिम शांत हृद नव निर्द बुद्ध ज्ञान, सर्वदन सिद्ध विद्या ताप जोग प्राप्त ध्यान। ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रकाश, सबके मद सकल देवदास। सुंदर चतुर्दात कविता, सुंदर सी एक दृष्टि तय फल, तिह जान का मुख बने। गुरु नानक नाम वचन मन सुने, यो निदान जप मन कुए, सब जुग महता की गात हुए। गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सकल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत का मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मेटाय, संत कृपा दी जम दी छुटाय। जाके मस्तक करम प्रभाय, साध शरण नानक तियाय। जिस मन बसा सुना लाय प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभु चीत। जन्म मरण ताका दुख नवार, दुर्लभ दिख तत्काल उदार। निर्मल शोभा अमृता की वाणी, एक नाम मन वह समानी। दुख रोग बिनसी पै परम, साध नाम निर्मलता की करम। सबति ऊचता की शोभा बनी, नानकी ही गुण नाम सुखमनी। दुख रोग बिनसी पै परम, साध नाम निर्मलता की करम।

इस रूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ते विभूते कलंकं बिना ने कलंक इस रूपे नमो राज राजेश परम रूपे नमो जोग जोगेश परम सिद्धे नमो राज राजेश परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणी नमो वस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वर परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा बृहदकर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओघ हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं छेदी अपेदिया नामं अकामं समस्तो पराजय समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेस हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ते निधाने नमस्तवंग निर्णाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञांग नमो परमुतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृशंग नमो सर्व कृषंग नमो सर्व रंगे तिरभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुल कर्म गुणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्ध निवासी चरपट छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखाल जोगे अचाल भोगे अचाल राजे अटल साजे अखाल तरम अलख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुर कपा सर्व मान त्रिमान देव पे आद उदार सर्व पाल सर्व काल सर्व कोपन काल जतर तत्र विराज अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जा जा कर रूप रंग न रेखे आद पुरख उदार मूर्त जौन आद अशेख देश और न पे जा कर रूप रेख ना राग जतर तत्र दिशा विशा हो फैलन राग नाम काम विहीन पे कताम हुने जाय सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन तो कह फिर एक देव पे ना जान ही जे वेद और कते रूप रंग ना जात पास हो जान ही कह जेब तात मात ना जात जाकर जर मरण बहीन चक्र बकर फिर चतर चक्र मान ही प्रतीन लोक चौदह हैं के बिखे जग जाप जे जाप आद देव अनाद मूर्था प्यो सब है जे थाप परम रूप बनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचे सुयंग भव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सु परम रहत अभूत लख अपेस अंग राग न रंग जाके जात पात ना नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुग्धाय काम आप रूप अमीक अन उस्तत ए पुरख अवतूत गर्व गंजन सर्व पंजन आदि रूप असूत अंगहीन अभंग नात्मे पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन वेख सर्व शास्त्रना जानी जय रूप रंगर रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवहि चित मधुपार छंद त्व प्रसाद गुण गुणदार महिमा अपार आसन पंग उपमानंग अनुपव प्रकाश निस्दिन नाश जान बाहु सहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान डंक कालान कालन पूतंग आपा अपंगत मित अपार गुण गुणदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम अत्युत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्मा दृश्य धर्म सर्वापरणा डेंडड बाडे चाचरी छंद प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारी हरियंकरी निनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद ना सतरे ना मित्रे ना ब्रह्म ना पितरे ना कर्मंग काय ना जंग ना कर्मंग ना काय अजन्मंग अजाय ना चित्रे ना मित्र परे हैं पवित्र प्रथीस है आदिश है आदृश है आकृष है भगवती छंद प्रसाद कथते
ਕੇ ਆਛਜ ਦੇਸੈ ਕੇ ਆਭਿਜ ਭੇਸੈ ਕੇ ਆਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕੇ ਆਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕੇ ਆਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕੇ ਆਦਿਤ ਸੋਕੈ ਕੇ ਅਭਤੂਤ ਬਰਨੈ ਕੇ

सुतकर्ण है। के राजं प्रमाह के तर्मं तुजा के आशोक वर्ण के सर्वापर्ण के जगतं कृति हैं के क्षत्रं क्षत्रिय के ब्रह्मं स्वरूप के अनुपौ अनुप के आददेव हैं के आपपेव हैं के चित्रं बहिन के एक अधीन है के रोजी रजा के रही मेरे हक के पाक बे ऐब हैं के गैबल गैब हैं के फुल गुनाह के साहान साह के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहंद हैं के राजक रहीम हैं के कर्म करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम के परम फहीम के आकलाम के साहिब कलाम के सुलवजू है तमाम रजू है हमें सुलसलाम सलीखत मुदाम गनी मुलशिकस्ते गरीब परस्ते बुलंद मकान जमील जमान तमीज सुमाम रजोल निदान हरीफ लजीम रजायक यकीन नेकुल तिरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं आजीज निवाज गनी मुल्ख राज हैं निरुक्त स्वरूप है त्रि मुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुक्त सुधा हैं सदैव स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुलसलाम सदैव काम हैं निर्वाच स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओंगाध रूप हैं अनाद स्वरूप हैं नंगी नाम त्रिपंगी त्रिकामे तिरवर्गं त्रिवादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुडागे त्रिभुक्त स्वरूप हैं छिद हैं छूत हैं किनर्कं प्रणाश हैं पृथ्वल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैव सदा हैं विभुक्त स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुक्त प्रभा विभुक्त प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अभंग हैं नंग हैं भेख हैं लेख हैं परम हैं कर्म हैं नाद जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं भूत हैं तूत हैं अनाश उदास हैं तंद हैं बंद हैं अभगत हैं बेरक्त हैं अनास्य प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनित हैं लिखे हैं दिखे हैं लेखे हैं पेखे हैं अडाह है अगाह है संभ है गंभ है नील है नाद है नित्य हैं सुनित हैं अजात हैं आजाद हैं चरपट छंद प्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं श्रीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं महसूल सलाम समस्तुल कलाम के साहिब दिमाग के हसल चराग के कामुल करीम के राज करीम के रोजी दहंद के राज करहंद करीमुल कमाल के हसल जमाल गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवास हैं हरीफुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंगंग प्रणास हैं समस्तुल निवास है गंदू गनीम है रजाय करीम है समस्तुल जुबा के साहिब किरा हैं के नरकंग प्रणास हैं भेषतुल निवास हैं के सर्वगुल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमाम तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परंग परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं देसुल लेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमिल जमा हमी कुलिमा करीमुल कुमाल के जुर्त जमाल के चलो प्रकाश के अमितो सुबास के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा हैं के अचल अनंग के अमितो अपंग मधुपार छंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गुन मुदाम अरबर अगंज हर नर अपर पंज अन गन प्रणाम उन्मल सलाम हर नरखंड बरन रमंड अनपवनास मन मन प्रकाश गुन गन प्रणाम जलथल मुदाम अनछे जंग आसन पंग उपमा पार गत में तोदार जलथल मंड दिस विस पंड जलथल महंत दिस विस ब्यंत अनपवनास त्रित तरतुरा सजान बाहु एके सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम छिज गात अजज न बातन झंझ गात रनंज बातन टुट भंडारन ठटिया पारा डीठ तरमत ठीठ कर्म आण ब्रण अनंत दाता महंथर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणाल हैं अरकाल हैं खलखंडन हैं महमंडन हैं जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कल कारण हैं सर्व उबारण हैं
त्रित के धारण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वास्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, पारते पर हैं, करुणा कर हैं, अजपा जप हैं, अथपा थप हैं, आकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं, आकृता कृत हैं, धरणी तृत हैं, तेश्वर हैं, परमेश्वर है, आकृता कृत हैं, अमृता मृत है, जपा कृत हैं, अमृता मृत हैं, निर्णायक हैं, खलकायक हैं, विश्वम्बर हैं, करुणाल हैं, निरपनायक हैं, सर्पायक हैं, पौपंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, आकलन कृत हैं, सर्वा कृत हैं, कर्ता कर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्मा हैं, सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्यानी, नमो जुद जुदे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पानी, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आसासे, नमो बाक बंके, अभंगी स्वरूपे अनंगी, नामित्र भंगी त्रिकाले अनंगी, अकामे कछरी छंद, अजय अलय अपय अवय अपू अजु अनास काश गंज पंज अलख पख काल दयाल लेख भेख नाम काम आका अनाम काम अगाह डाह नाथ परमाथ अजोनी मोनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे आकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंडुल अनामे समस्तुल निवासे, नृकामं विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विपूते, सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्तुल निवासी, अजायब विपुते गे जायब गनी में, हरियं करियं करी मुल रही में, चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पुगते, सुयं भव शुभं सर्वदा सर्व जुगते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विपुते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार, सतगुर प्रसाद पातशाह दसवीं त्वै प्रसाद सवैये, श्रावक शोध समूह सिधान के देख प्रयोग कर, जो जति के सूर सुरार्दन शोध सुधाधक संत समूह, अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे, मत को ना देखे तो प्राणपति के, श्री भगवान की पाय कृपा हूँ ते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप तंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के, गौन को जात निवारे, भारी पुजान के भूप पली बिद न्यावशीस न जात बिचारे, एते भय तो कहाँ भय भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे, जीत फिरे सब देश दिशान को, बाजद ढोल मृदंग नगारे, गूंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे, भूत भविख पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे, श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे, तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसेख है, वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जवान सबान के पेख है, पौन आहार जति जत तार सब सुविचार हजार क देख है, श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है, शुद्ध सिपा दुरंत दुबासु साज सना दुर जान दलेंगे, भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे, श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड्डे बिरयार आ बिचारे, सार की धार पछया तोर देश मलंद मवासन, माते मग माते गजान के मान मलया, गाड़े गडान के तोड़न हर सुबातन ही चकचार लवया, साहिब श्री सब को सिरनायक जाचक अनेक सु एक दवया, दान देव विन नंदन साचर भूत पविख पवान जपेंगे, जीव जते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे, पन प्रतापन बाट जायत तौन पापन कै भौ पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सब अवलोक चपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र नराध पजोंतर लोको राज करेंगे, कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज बरेंगे,
ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर प्रेरणा दे तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे बक ध्यान लगायो न हाथ फिरे लिए सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो बिखयान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लिहो सब है जिन प्रेम की हो तिन ही प्रपायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंगरे लटकायो काहू लिखे हर वाची दिशा में काहू पछा को सी सुनवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हादे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण नमन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुस्सबै तुम काबो आपा दे मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर रक्षा निज कर दै करियै सबै रण को आसंगरियै पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अवरना त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आपहा दै मुदै अबरी है मरण काल का त्रासन वरियै हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करे हो रच्छा राख ले मोह राखन हारे साहिब संसहाय प्यारे दीन बंधु चुन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राय ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत दक्षण उपजायो आदम तेके अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्क करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ अवतार आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताका कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कह बि सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहि भूपा अंडज जे रज सेत जकीनी उतबुज खान बहर रच दीनी कहूँ फूल राजा वह बैठा कहूँ सिमट पे संकरे कैठा सिगरी सिर दिखाए अचंग पवाद जुगाद स्वरूप सुयंग पवा बरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तो पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तु जितव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा होय ताहे सब काला दुष्ट अरिष्टरें तत्काला कृपा दस्तन दैन हर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद सिद्ध कर्मों सब होई दुष्ट छाछ वै सके ना कोई एक बार जिंतु मैं संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तमै शरण तिहारी आपा दे लह उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाय दुष्ट दोख ते लह बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अस्तु जपय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांचत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ल सुनै गुंग जो जाह सुरस ना पावई सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नरके रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई
संबत सत्रह सहस बणिजय अर्ध सहस पंतीन कहिजय भाद्रव सुधी अष्टमी रवारा तीर सतत द्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गह जब ते तुमरे तब ते कुआ आख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बह भेद कह हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहयो सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार।

0: वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहिगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।
0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru.

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन माता गुजर कौर जी, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जीओ। शुकराना है आप जी दा, आप जी ने कृपा की, अमृत वेले दात बख्शिश की। जिन्हां संगतां ने अमृत वेले आप जी दी निघी गोद विच बैठ के और घरां विच बैठ के वाहिगुरु सिमरन दे विच हाजरियां भरियां हन, सब दियां हाजरियां दर ते प्रवान करनी है महाराज, सब दे घरां परिवारां बच्चियां दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखना, चढ़दियां कलां बख्शिश करनी आ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ। अज दे जो हुक्मनामे दी बख्शिश हुई है, गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र रसना तो ये शब्द उच्चारण होया है। पातशाह फरमान कर दे।

सच्चै प्रेम प्यार आपां हर रोज़ अरदास दे विच एक महाराज जी दे चरणा विच बेनती करते हाँ। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। हे मेरे वाहिगुरु, एहो जे हिरदिया ना मेल करायो जिहड़े हिरदिया दे नाल मिल के मेरा सिमरन चल पवे। एहो जे हिरदिया ना मेल करायो जिहड़े हिरदिया नाल मिल के मेरा मन करे मैं गुरद्वारा साहिब जावां, मैं नितनेम करां, बाणी पढ़ां, तेरे चरणा नाल जुड़ जावां, मेरा तेरे नाल प्यार बन जावे, बाणी नाल प्यार बन जावे। एहो जे सत संगियां नाल मिलायो पातशाह, एहो जे सजना नाल मिलायो, क्योंकि जिहो जे इंसान दी संगत हुंदी है, गुरु अमरदास महाराज जी कहिंदे ने ओह जिहा मन हो जांदा है। मन मुखां दी संगत मनमुख बना देवेगी, गुरमुखां दी संगत गुरमुख बना देवेगी।

मिल प्रीतम तिनी ते आया सच्चे प्रेम प्यार। पातशाह जिन्हां दा तेरे नाल प्यार है उन्हां सत संगियां दा मिलाप करा दिओ, उन्हां सज्जणां दा उन्हां गुरु प्यारियां दा मिलाप करा दिओ महाराज। क्यों? उन्हां हिरदिया ने तैनू मिलिया है ते तैनू मिले नहीं कल्ली त्याया भी है, त्याउण दे नाल जुड़े हुए हिरदे तेरे नाल जुड़े हन ते उन्हां हिरदियां दी संगत करके साडा मन भी जुड़ जाएगा। मन ही ते मन मानिया गुर कै शब्द अपार। हुण जुड़े हुए हिरदे गुरु दे शब्द राही उन्हां दा मन जुड़ गया, ते कल्ला मन जुड़िया नहीं जिहड़े उन्हां दी संगत करदे ने उन्हां दा भी जुड़ गया। एह सज्जन मिले ना विछड़े जे आप मिले करता। अगलियां पंक्तियां विच गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी कहिंदे ने जिहड़े हिरदे उस मालक दे चरणां दे नाल जुड़े हुंदे ने, पातशाह इह तेरी बख्शिश दे नाल ही उहनां दे नाल मेल हुंदा है। इंसान दे हत्थ विच कुछ नहीं है, उन्हां सत संगियां उन्हां हिरदियां दा मेल जिहड़ा है ना उह परमात्मा दी कृपा दे नाल ही हुंदा है। ते जदों मेल हो गया हुण मन भी गुरु दे चरणां नाल जुड़ गया, क्योंकि जुड़िया होयां दी संगत मिल गई।

दुखदार उस खरोग भया जा सकता न होई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तिरंत न जाई लख्या रहा। जात मैं जोत जोत मैं जा।

0: जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
1: योग शब्दों ज्ञान शब्दों विश्व ब्रह्मण खत्री शब्दों सूर शब्दों सूद्र शब्द प्राप्त है सर्व शब्दों एक शब्दों जे कोई।

रहै न ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन खंडा जाके हाथ में कलगी सो है सो हमरी रशिया करे गुर कलगी तार जगदीश सो

क्या तिस चारु गुण छोड़ बिख लद्या अवगुण का वण जारु सदड़े आए तिना जानिया हुक्म सच्चे करतारो नारी पुरख भी शून्या विछुड़या मिलनहारो रूप न जाने सोहनिया हुक्म बद्दी सरकार बालक बिरद न जाननी तोड़न हेत प्यार नौ दर ठाके हुक्म सच्चा हंस गया गहनारे सा धन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया मृत कड़ा अंग नड़े बारे सुरत मुई मरमाइए महल रुन्नी दरबारे रोवो कंत महेली हो सच्चे के गुण सारे जल मल जानी ना वालिया कापड़ पट अंबारे वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मुए मन मारे जानी विछुनड़े मेरा मरण पहया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरै सो जानिए फिर सचड़ा हित प्यारे तुसी रोव हो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे हाओ मुठड़ी धंधा तहवनिया फिर छोड़ी अड़ी विदन कारे घर घर कंत महेलिया रूड़ा हेत प्यारे मैं फिर सच सालह ना हो रह सहड़ी नाम पतारे गुर मिलया वेस पलटिया सातन सर सिगारो आवो मिलो सहेली हो सिमर हो सिरजन हारो बैयर नाम सुहागणी सर सवारण हारो गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वडहंस महला पहला जिन जग सिरज सुमाया सो साहेब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर न पालिया घड़ घड़ शब्द पछाणो वा सर शब्द पछाणो दूर न जानो जिन रचना राची नाम त्याए ता सुख पाए बिन नावै पिड़ काची जिन थापे बिद जान सुई क्या को कह वखाण जिन जग था बताया जालो सो साहिब प्रवाणो बाबा आया है उठ चलना आद पंदा है संसार वार सिर

जब मार्ग पंथन सुजई उजड़ आंद गुबारुआ ना जल लेफ तुलाइया ना भोजन प्रकारुआ भोजन पाओ ना ठंडा पानी ना कापड़ सिगारो गल संगल सिर मारे उबो ना दिसै घर बारो इब के राहे जमण नाही पछताने सिर भारो बिन साचे को बेली नाही साचा यो विचारो बाबा रोव है रवै सो जानिया मिड़ रोवै गुण सारे वा रोवै माया मुठड़ी धंधड़ा रोवण हारे वा

फुल हर सर पावै। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सूढ़ी तिलक दिया, गुरु शब्द सच निसान जियो। सत

0: पांडे महंत गुबारा हर का नाम संग उजियारा
1: हर का नाम तनाल पहचानू
0: जय मां प्यान तपत बो काम ते हर के नाम की तुम ही ऊपर छाम
1: तरीका मां तुझा करके ते नानक हर राम रत बरके।

0: रंग रत रंग एक नानक जन कै बिरत बिबेक
1: हर का नाम जन को मुक्त जोगत हर के नाम जन को तृप्त भोगत
0: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न पंग
1: हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई
0: हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत का

0: न जानी।
1: ओत पोजन हर रस राते सुन समाज नाम रस माते।
0: हर पैर जन हरा जपे हर का भगत पर नहीं छपे।
1: हर की भगत मुक्त भो कर।

0: सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाई।
1: मिथ्या तन तन कुटुंब सुवाया, मिथ्या हम मैं ममता माया।
0: मिथ्या राज जोवन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल।
1: मिथ्या रथ हस्ती अशुभ वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता।
0: मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस कुपर करत गुमान।
1: अस्थिर पंच साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण।
0: मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्व कहिरे।
1: मिथ्या नेत्र

0: राष्ट्रपति जय प्रसाद क्षति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे
1: जय प्रसाद सुगंध लावे तिसको सिमरत परम गत पावे
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याए सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्यावन जोग
1: जय प्रसाद पाठ प्रथम भंडार।

0: जस संतखाने।
1: जय प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म।
2: प्रभु जी जब तक मन पावे नानक पद सिद्धि कर जावे।
1: जय प्रसाद आरोग कंचन देही, लिवला वो तिस राम स्नेही।
2: जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके।
2: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे, मन सा सा सिमरो प्रभु ते।
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे।
2: जय प्रसाद अभूगन पैरी जय, मन ते सिमरत को आस की जय।
1: जय प्रसाद अश्व हस्त अस्वारी, मन तिस प्रभु को कभू न बिसारी।
2: जय प्रसाद भाग मिलक तना, राख कोई प्रभु अपने मना।
1: जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत से त्याई।
2: जिसे त्याई जो एक अलख है, यहाँ हुआ नानक तेरी है।
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
2: जय प्रसाद तू चार बिहारी, सब को साथ साथ।

0: और प्रसाद नानक जस कहै,
1: जे प्रसाद सुनै करनाद, जे प्रसाद पीखै बिस्माद,
0: जे प्रसाद बोलै अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना,
1: जे प्रसाद हस्त कर चलै, जे प्रसाद सुपूर्ण फलै,
0: जे प्रसाद परम गत पावै, जे प्रसाद सुख सहज समावै,
1: ऐसा प्रभु त्याग और गत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो,
0: जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभु को मूल न मनो बिसार,
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर तू ताको जाप,
0: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे,
1: जय प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू का सुराच,
0: जय प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपे जप सोए,
1: आप जपाए जपे सो नाओ, आप गावाए सो हर गाओ,
0: प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास,
1: प्रभु प्रसन्न बसे मन सो, प्रभु दया ते माथे उत्तम होए,
0: सर्व निधान प्रभु तेरी।

0: राष्ट्रपति।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सब को सोख।
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीर्थ समान जैसे राजा रंग को लगे तुल्पमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीर्थ एक जो सदा को खुदे को चंदन लेप।
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ।